0: सब सुन रहे हैं ट्रिपल वाइब 107.7।
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.